आसकुड़ावा पार कुड़ बोल करे आहार श्रम धर्म का डेरा दुर्नान कुड़ा भरपूर मत है टिकाते दुध का यह सूर्य जगत का साई नील वस्त्र पर होवे परवान मले।

आखे अपना जिस नाही सोचुन कटिए किता आप अपना पहले का संडिए जा रहना ना है तो जगता कायदगार भंडिए मंदाक सिना की।

नानक दास तेरी शरणाई वाहिगुरु सदा सदा बल्ले हारे सदा सदा बल्ले हारे सचिया सदा सदा बल्ले हारे तुदिया गे यारे दास आ मारी वाहिगुरु

सचिया बादशाह कोई ना वो ना गया ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरा घर नंद बधाई तो घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिस जत कता नानक दर्शन दास तुझे आगे बिन मुताक
1: नानक दर्शन

सच्चे पातशाह आप जी के पवित्र पावन तख्त सचखंड दरबार जी दियां हाजरियां पढ़दियां होया कीर्तन का सत्कार करदियां गुरु रूप साध संगत जी वालों कीर्तन शब्द भेट बेअंत माया हाजिर हो गया हाजरियां दर विच प्रवान करनिया गुरु रूप साध संगत जी दियां आसा मनसा संपूर्ण करनिया यात्रा सफली करनी हर मैदान फतेह रखना चढ़ दी।

अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुमन सर्वदा सर्व जुगते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूप सदा अंग संगे पंगन भूते देख ते गोफ ते अनुसत बेदन गाप दस नानक गुरु गोविंद सिंह जी काल जी सहाय दरबार में तेरो दरबार अचित कम सैन अहंकार लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबार।

जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं रटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि।

करता करीम सुवी रस करहीम ओए दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही के सेव सब एक गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक बयान एक को भ्रमाव है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

जैसे एक आग ते कनू का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनू का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते काछ माच केते उनको करत भज केते अच वच हो सपच उठ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज के तक प्रत जो है

ज्यों अतेज मैं अतेज जस तेज लीन ताहि तय उपज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है। कित गंग बास कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भरमाई फिरत है। करवत सहत कित वू मैं गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान मैं उड़त कित जल मैं रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरंद मनाए हारे मडी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

bang na re khang na mo hang na gro hang na dro hang na dwa khang na kar mang na var mang na jan mang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na ne hang na ke hang na ka mang na dha mang na putrang na mitrang na satrang na bha mangale khang ga be khang ga jo ni sarupang sada siddha da buddha da vridh rupang nahi jan jahi kachu rup re khanga basata ko phira kaun ve khanga namata ko kaha kai kaha kai bakhano kahe main na ave न रोगंग न सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग द्वैखंग अभेखंग जो नि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अच्छयाद अद्वै अविनाशी न जातंग न बातंग न रूपंग न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे किते कर संसे कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर मिटे बनाए अगादे अभयाद अद्वै अविनाशी परेयंग परापरम पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग काधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छ विभूति न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वितरे सुभूते भविखे भवान यचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अपेहंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नि अच्छयाद अद्वै अजोहंग न जन्मंग न वर्णंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्भिखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग।

कहूं ऋत विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षराहू कहूं वीर विद्या भूतं प्रभाहू कहूं छल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजन।

भव प्रकाश अक्षय स्वरूप अद्वय अनासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतपान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं वरम भेख जय करम वरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम ताव नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत काम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक जुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कूक काव कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पवन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भच्छ नहीं तदब देव हो वत प्रताच्छ कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र

तीरथ तीरथ भरमत सोभरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तद्दपता सपायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सोगनम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ वस्वमेद मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जाछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई बचत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई जगनताप कई जबत उर्द लटकंत जाप कई जबत जोग कल्पं प्रजंत नहीं तदप दास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान भव करत हो मर जग।

जय जम्पह जुगण जू हजुअंग भय कंपह मेर पयाल भुवंग दबताप सर्व जलेर थलंधन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप वेद व्यंगन खंड अभूता छेद छ्यंगन काल पाल दयाल सुवंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रच्यंग देवा देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रच्यंग सर्व मकीन मका जे राख न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भूख भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जात न पात न मात पितंग जे रच्यंग छत्रि छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रुबिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देवा देवा भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तजोत भुजंग ये देवा देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातन पातन ज्योत जुतंग जे तातन मातन ब्रात सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुवंग जे जम पै किन्नर जच्छ जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाच्छ भुजंग दिए गज बाज रथादिक बांध गणंग भवभूत भविख भवान तुवंग जय अंडज से दज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास की ओ फल फूल कली वो मेरा काश निवास तंग रज रोजे का दिश चंद्र वितंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देवा देव सच्चे अंधूता भूता छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेदा भेदा छेद नरंग जे चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रे गुरुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि शिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच्छ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम पद भेद पुराण सभा जय भेद कतेव अनंत कह जय भूता भूत न भेद लह जय भेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तव ताप करै नहीं नैक कृपा नित पान परै जय फोकट धर्म सभै तज है एक चित्त कृपा नित को जप है तेउ या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं गोट प्रति इम वेद उचार सार सुती जो वारस के चस के

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न दात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेघ सेघ भेक है सदीव विश्ववरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्ववरण है जिमी जमान के विघ सदीव करम वरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानी है सदीव सर्वठौर में विशेख अन्न मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नित नित कह बतावई न कर्म में न धर्म में न ब्रह्म में बताइए अगंज आद देव है कौस कैस पाइये जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है न गाढ़ है न बाढ़ है न गाढ़ बाढ़ होत है नहान है न बान है समान रूप जानी है मकीन यो मकान अप्रमाण तेज मानी है न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दुख है न दाख है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रूप रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र

न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न चल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, वलीय रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्त।

न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है, न काम है न

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्तपि विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानी है सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह।

रूप राग ना रेख रंग ना जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरक सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजय चक्र चिहन न चित आद देव उदार मूर्त अगाध नत अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जानी जय मरम वेद कतेब सन गौ सन के सनंदन पावे ही न सेब जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार हे शिव सकर ओ मुख चार सर्व सपत पतार के दर जापई जय जाप आद देव अगाध तेज अनाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज थे राज राज प्रवीन जछ गंधर्व देव दानव न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णंके बिखे विराज सूर भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सवत पतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहंस फन नहनेत पूरन होत सोत सोत हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त थके महाकब गड़त गाड़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखे।

आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुन सनमयक मथे दानव प्रहारन नरक निवारण तम उदारण उर्दधे जय जय उसी मैकासुर मर्दन रम कबर्दन आदि वृत्ते डाबरूढ़ वंगे बर्ब वंगे भुजा फरंगे तेज वरंग लंकुड़िया।

चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन दुजा परंगण फणी पुंगारण ज्योत जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय होसी महघासुर मर्दन रंभक वर्दन छत्र चिते दामनी प्रहासन शुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचंजुद्ध प्रमासन हृदय नराचंदर अमृते श्रोणत अचिंती नल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष्ट पजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणि अर्पुंकारण बाग बकारण सस्वहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुरहारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विप्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हुसी मैखासुर मर्दन भनम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु गमंकण सहस्रज मंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हुसी मैखासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उदार।

संकटे निवारण तम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकरखण आद अनिल अगाध फे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंगे के हरलंगे आद तंके क्रूर कथे जय जय उसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोजन वृतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहा से सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज

सुन लाजे किल बिग भाजे सुकूप राजे मधुरंग दुर्जन दल दजे मंदन रिज सब न भजे रूह रणंग जय जय हुसी मै खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर प्रत्यय धूम राज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जाक विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासतरण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय द्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जो कि जोग साधे पौन साधना कि तेग बांध अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पहचानने जे काम है। मर टांगिल तेरे मन सो तपस्या कर दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रू के रुहल मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस न्यावे देवते दे आए दुख दे के दलत है। जिन्हें तोहे दयो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश कंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन सदा दीन कहियत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे बहु जतता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुखचार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते शस्त्र राशि किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महाधीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है। करते हैं विचार पै न पूर्ण को पावे पारता हित अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पार वार पाइये न पार पाइये न पार पे अपार के बखानी है। अद्वया विनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सुझटा के अन मानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को खर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को बोगत के वृद्धता की वासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ के घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के अपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारावार हूँ को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हलब जब पूर्वी न पार पावे असद अनास है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाद अद्वया विनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरैया ध्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है।

श्री हर गोविंद हर कृष्ण गुरु तेग पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुरु पाल गुर

अमृत ज्ञान मानक श्री गुरु ग्रंथ सा श्री गुरु ग्रंथ वाहे गुरु जी की फतेह।

आप जी ने अवतार उतारा है, धारण करके छोटी उम्र का पूरी आवरण काल में छोटी उम्र चोर आप जी बाल तलवंडी दे विच सत्कार लोगी दे बाल कालू जी जो उन्हां दे घर माता तृप्ता जी दे उन्हां दे घर चोज करता रहे ने आप जी चोज करता रहे ने महाराज जी कुछ वड्डे होए ने महाराज जी कुछ की बड़े होए ने जिवें बच्चा नहीं सियाणा की रिड़दा रिड़दा इक दिन तुरना फिर रिड़दा रिड़दा इक दिन फिर खेड़दे कद काटी उहदी खेड़दे खेड़दे कद फिर थोड़ी ब्राह्मण खत्री अपनी पंडित हरदयाल जी ने कहा ब्राह्मण भी खत्री ब्राह्मण हो खत्री ब्राह्मण पाएगा जवाब जरूर मेनू करके है महाराज जी कारण की है दसो जिस कारण
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਜਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ

पदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद पेद अर आलम।

साहिब सतू चंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दीदार मिले बोलो जी। बिबोर साहिब जी पंजे साहिब जी कपाल मोचन जी रणमोचन जी नानक मत्ते जी तिलगंजी जी नानक चीरा जी शिकार घाट जी हीरा घाट जी माता साहिब देवा जी संगत साहिब जी माल टेकड़ी साहिब जी बसमत नगर दमदमा साहिब जी बंदा घाट जी नगीना घाट जी गंगा गोदावरी जी दे इशनान समूह गुरधामा साहिबां जी दे सुख दे।

सूरज चंद निशत्र सची पत और सबै सुरपेखत सो खैंच कै मूंड दई कर वार की एक को मार किए तब दो सोम तो ठूक वै भूम परयो तन ज्यों कल वत्र सो चीरत को दोहरा सोम्भ मार कै चंडका उठी सो संख बजाए तब तुन घंटा की करी महा मोद मन पाए दैत राज छिन्मय हनियो देवी ए प्रकार अष्ट करण मह शास्त्र गह सेना दई संघार सवैया चंड कै कोपना ओप रही रण मैं असधार पई समुहाई मार बिदार संघार दय तब भू बिना करे कौन लराई कांप उठे अर तास ये तार शार दई सब पौरख ताई दैत चले तज खेत इउं जैसे बड़े गुण लोभ ते जात पराई एत श्री मार कंडे पुराने चंडी चरित्रे सुंभ बद है।

ब्रह्म ते आद सभै भय पीते तेहि वह दैत पराए गए रणहार निहार पाए वे बल रीते जम्बुक ग्रेज निरास पाए बनबास गए जुग जाम न बीते संत सहाय सदा जग माए सो सुंब निसुंब बड़े अर्जीते देव सभै मिलकै एक ठौर सो अच्छत कुंकम चंदन लीनो तच्छन लच्छन दैकै प्रदक्षण न टीका सो चंड के पाल मै दीनो ता शब को पुन ता शब को उपजियो तह भाव एह कवने मन मै लख लीनो मानो चंद के मंडल मै शुभ मंगल आन प्रवेश कीनो कविता मिल कैसो देवन बडाई करी काल काकी एहो जग मात तै तो कड़ियो बड़ो पाप है दैतन को मार राज दीनो तै सुरेश हूं को बड़ो जस लीनो जग तेरो ही प्रताप है देत है असीस दे जराज रिख बार बार ताहां ही पड़ियो है ब्रह्म कौच हूं को जाप है ऐसे जस पूर रहे हो चंड।

जूझ मरों। चंड चरित्र कवितन मैं बरनियो सब ही रस रुद्रमयी है। एक ते एक रसाल पयो नख ते सिखला उपमा सो नई है। कौतक हेत करी कव ने सत सैया की कथा ए पूरी पई है। जाहे नमित पड़े सुन।

एक ओंकाराद विश्वाराम एक ओंकाराद विश्वाराम उतराम जल जय सजन गुराम उतराम जल जय सजन वै उपचार आसुरान भंज वै प्रपत वै आसुरान भंज सुपर दल के वै नाथ भंज के वै जन दर्ग मंज है दर्ज सुन दे हे तब वै शिखर समुद्र जय पुत्र गरे वै शिखर बहुत वै बहुत बहुत वै धर्मा विश्व कहर बस मै धर्मा संसार ब्राही दुखत बार दर ही मान परी कल के पार नाथ भंज परी कल के पार

0: सगरी पूरी शायद स्वर्ग का जो
1: आज
0: सगरी
1: जो
0: पंथ
1: इस
0: चाहे बाबे
1: सगरी
0: दुर्गा
1: पंथ
0: पे
1: में
0: बड़ी
1: बड़ी
0: नाम
1: नाम
0: है
1: है
0: विदेश
1: विदेश
0: में
1: में
0: कहीं
1: कहीं
0: तुम
1: तुम
0: लोग
1: लोग
0: भी
1: भी
0: बात
1: बात
0: भी
1: भी
0: हम
1: हम
0: छपरी
1: छपरी
0: से
1: से
0: ना
1: ना
0: कोई
1: कोई
0: राम रहीम पुराण गान रहम एक नम राम सुरन शास्त्र वेद शिव है स्वप के देख रहे मैं न जानियो मंडल जो

मोहिनी छंद जय जय देवी पावाणी पवखंडी दुर्गा सरबाणी केसरिया बाही गौमारी पवखंडी भैरव उद्धारी अकलंका अत्रि शतराणी मोहिनी अंग सर्वंगलोकाणी रगतांगी सावी सावित्री परमेश्वरी परमा पावित्री तोतलिया जय बा गौमारी पवभरणी हरणी उद्धारी मृद रूपा भूपा बुद्धाणी जय जंपै सुदंग सिद्धाणी जगधारी भारी भगतायंग करधारी भारी मुक्तायंग सुगंधर गोफणिया गुरजाणी दे बरणी हरणी पावाणी पिम परिया जच्छंग सर्वाणी गंधर्वी सिद्धंग चाराणी रक अकलंक स्वरूपं निर्मलियं कण मध्ये मानो चंचलियं अस्पाणं मानं लोकायं सुख करणी हरणी सुखायं दुष्ट हंती संतंग उद्धारी अनशेदा पेदा कौमारी आनंदी गिरजा कौमारी अनशेदा पेदा उद्धारी अनगंज अपंजा खंकाली मृग नैणी रूपंग उज्जाली रक्तांगी रुद्रा पिंगा ची गड़गच्छी स्वची हुल्लासी रक्ताली रामा तवलाली मोहनी आ माई खंकाली जगदानी पानी पावाणी पवखंडी दुर्गा देवाणी रुद्रांगी रुद्रा रक्तांगी परमेश्वरी माई धर्मांगी मैं खास सुरधरणी महपाली चिचरा सुरहंती खंकाली असपाणी माणी देवाणी जय दाती दुर्गा दिपावाणी पिंगाची परमा पावित्री सावित्री संध्या गायत्री पै हरणी भीमा पावाणी जय देवी दुर्गा देवाणी दुर्गा दलगाही देवाणी पै खंडी सर्वंग भूताणी जय चंडी मुंडी सतरहंतरी जय दाता माता जयंती सांग सरणी धरणी लोकाणी स्वयं पिम भरणी धरणी दईदाणी के करणी कारण लोकाणी लोक हरणी देवंग इंद्राणी सोम हंती जयंती खंकाली कंकरणी कंकड़िया रूपा रगताली तोतलिया जेवा हिंदुलिया इंगुलिया माता पिंगुलिया चंचाली चित्रा चित्रांगी पिंप्रिया पीमा पसरबांगी बदबू कूपा जुज्वाली अकलंक माई निर्माली उछले लंकुड़िया छतराला पिंपरिया भैरो पौहाला जय दाता माता जय दाते जय दानी लोकेसी दुर्गा पावाणी सम्मोही सर्वंग जगतायंग निद्रा छुदा पिपासायंग जय कालंग रात्रि सकराणी उद्धारी भारी भगदाणी जय माई गाई बेदाणी अनछेद पेदा खेदाणी भय हरणी सर्वंग संतानी जय दाता माता कृपाणी अचकड़ा छंद अंबका तोतला शीतला साकणी सिंधुरी सुप्रभा सुब्रमा डाकणी सावजा संभरी सिंधला दुखरी सुमिला संभिला सुप्रभा दुधरी भावना पै हरी भूतली पैहरा टाकणी झाकणी साकणी सिंधुला दुधरा दुर्मुखा दुर्कटा दुधरी कंपिला जंपिला हिंगुला पैहरी चित्रणी चापणी चारणी चछरी हिंगुला पिंगुला गंधर्वा जचणी बर्मणी चरमणी परघणी प्रासणी खड़कणी गणगणी सैथणी सापणी भीमड़ा समदड़ा हिंगुला कार्तकी सुप्रभा छिदा अधरा मारतकी गिंगली हिंगली ठिंगली पिंगुला चिकणी चरकटा चरपटा चावड़ा अचकड़ा चौप्रसाद अछिता पिता सिदा दरियकटा खटा छटा दुधरी अंजनी अमका अस्त्र धारणी अभरंग अधरा जगत उधारणी अंजनी गंजनी साकणी शीतला सुंदरी सोप्रभा समला तोतला संभरी गंभरी अंबरी अकटा दुशिला दुब्रिखा दुर्कटा अमिटा भैरवी हरी पूछरा भावनी त्रिकुटा चरपटा चामड़ा मानवी जोबना जय करी जम्भरी जालबा तोतला तुंदला दंत की कालका भरमणा निभ्रमा भावना पैहरी बरबुधा दातणी सत्रणी छैकरी दुर्कटा दुर्भिधा दुधरा दुर्मदी अत्रटा अछटा अजटा अप्रति तंतला अंतला संतला सावजा भीमड़ा पैहरी भूतला पावजा डाकणी साकणी झाकणी काकड़ा किंकड़ी कालका जालपा जय मृणा ठिंगुला हिंगुला पिंगुला प्रासणी शसरणी असरणी सूलणी सासणी कन्निका अन्निका धनिका धौलरी रक्तका सकतका भगतका जय करी जिंग चिंगड़ा पिंगड़ा जिंगड़ा जालपा जोगणी पोगणी रोग हरी गालका चंचला चावड़ा चाचरा चित्रता तंतरी पिंबरी जछणी छिंछला दंतुला दामणी दुर्कटा दुभ्रमा दुधिरा दुधिता क्षुद्धिता निद्रका निर्भ्रमा नृगमा कद्रका चूड़का चारका चापणी चित्रणी चावड़ा चिंपिला जापणी बिसन पता प्रसाद कथना परज कैसे पायन प्रभाव अनजान निबड़ सकड़ा अगर सम अमृत सम समृत सुपट विचारो मन मत करह चरण कमलन पार हुए मन मत गुजारो मातृ सपत पित सपत पितरन कुल चौदों कुली उधारो बिसनपत काफी तादन देह सफल कर जानो जादन जगत मत प्रफुल्लित हुए देह विजय वरदानो तादन शस्त्र अस्त्र कट बंधो चंदन चित्र लगाऊं जाको नेत ने कह बोलत तास सो बर जपाऊं सो उठा
तौ प्रसाद कथता अंतर जामी अभय भवानी आदि नृग प्रेम भारत को चित की प्रथा पछानी आपने भगत जान पव खंडन अभय स्वरूप दिखायो चक्र रह बेक मुंजन सोर अजर अमर पद पायो सोपद में पान कृपाणी जाचर जातर जाच किन्नर असुरन की सब की क्रिया हिरानी जातर मत कीटा भ कव खंडियो सुमन सुम संघारे सोई कृपान निदान लगे जगदाहन रहो हमारे जा तन बिड़ा लाच चिछरा देख खंडन खन उड़ाए तूली करण तूमरलोचन से मासन ग्रिध रजाए राम रसूर किशन बिशना देख काल कृपाले कूटे ओट उपाय ताए सब था के बेन तय भजना छूटे सोई तव प्रसाद कितना सोभत पान कृपान उजारी जातन इंद्र कोट कई खंडे बिशन क्रोर त्रिपुरारी जा कहो राम उचर मुन जन सब सेवत ध्यान लगाए तस तुम राम कृष्ण कई कोटक बार उपाय मिटाए अनुभव रूप स्वरूप अगंजन कहो कवन बिद गई है जय वा सहंत्र रट त्रिगुण था कि कब जह वे कब बतैया भूम कास पतार जवन कर चौदह खंड बिहंडे जगमग ज्योत होत भूतल मैं खंडन आओ ब्रह्मंडे सोरठा बिशन पद जय जय रूप रेख वर जास पाए प्रमाए जय तय भीम को शिव द्वार जास पाए लगियो निशे सह कार मात्र एक देव तेस सहंस पे भग जास पाए अनेक किसन राम पाए किते पनकाल पाए बिहान काल को अनकाल कह अकलंक मूर्तमान जास पाए पयो सभै जग जास पाए बिलान तास ताहि तय अभिचार जड़ कर तार काहि ना जान नर हर जान काहि ना लेत तहें प्रवोस परियो पशु जय मोहि बद अचेत राम कृष्ण रसूल को उठ लेत नित प्रतनाव कहाँ वह अब जियत जग में कहाँ तिनको गाँव सुरठा तास क्यों न पछान ही जो हो हे है अब है ने फल काहे भजत पाहन तोहे कछु वरदै है तोहे कछु फल दै तास सेवो जास सेवत होहे पूर्ण काम होहे मनसा सर पूर्ण लेत जाको नाम बिशन पद राम गलित प्रसाद ऐ पितकी जबै बडाई रीजे देव दयाल तह ऊपर पूर्ण प्रकुश दाई आपने मिले देव दर्शन भयो सिंह करिय सवारी लीने छत्र लंगरा कूट नाच नाचत गण दै तारी राम गली झमकत अस्त्र छटा शस्त्रन की बाजत डौर अपार निरतत भूत प्रेत नाना बेद डैगत फिरत पैतार कोह कत फिरत काकणी कोह रत डैकत कठन मसान कहरत गगन सघन रेख दहलत बिटरत व्योम विमान देवी बाच सारंग बिशन पाद तौ प्रसाद कश पर मांगो पूत सियाने पूत भविख नहीं तुमरी सार सात चरित्र जाने जो वरदान चहो सो मांगो सब हम तुम्हें दीवार कंचन रतन बज्र

एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री गुरु सवैया पाशाह आदि अच्युत आद अनिल सत स्वरूप सदैव खने आदि रेम रंगल आद अगाद अशेद वेद लेख जनन पुत्र भगवान सब देव देव मणि तन सार दीन जल कृपा ने को वश वेद पर करना जाना सात सदैव सर्व सत प्रदान दन वेद पर जो ज्यादा देव देव देव में पुन बन देव देव कल से वेद मन भूम काल पदार्थ वेद कतरना पेदल है पैसे समाज पे करन सुमित साथ वेद भगवान प्राण विचार विचार आदन आदन गोहन द्रोह से वेद नाम चंद्र देव मुझे नाम आद नाद गाद सदा प्रभ सिद्ध स्वरूप सुबह पहचान गंधर जन महि का नागन भूम काल से उच्च जानियो लोक लोक ते सब साथ देव देव दुख प्रभान चेत ज्ञान सुजान सब कौन गांव लटो के पर बाहर कर मैं तो कहूं कहे और मंत्र में हर गम सिद्ध हमने राम के योगी श्रम का मने अवतारण मानियो ओ करतार में सार सब करतार ही का करतार जी जाने जाओ कहो राम अजोन अजय काई को छड़को जी हम गर्म गन करन सा ओम का कृष्ण कृपा ने तो काल से बद्ध भगवान लगायो और प्रीन धर तो कहते अपने गुरु नाथ के आदा जुन का है कौन दी देव की तात मात का है जब दी आई को इस में से भाग का नारक में सुनता हूं एक शान ओ गए विष्णु विष्णु जाय बार ग्रहण को मन जोते हम गोड केंद्र करे जन कोट बिन बिन दान दे केंद्र पर आज लगे तब साधा तो शिव ब्रह्म कच में वेद करना रखी हो जाए सो गुरु मन में ध्यान लगा ठियो सब लोगन सी चढ़न लगा हट लाइव में देव लोग लगे फिर लाज गई आई गुरु टकर दिन गुरु जान ने मुझे एक तमा हाजिर भी गंगा को गानो का मन को आई को जो पुंज बन आदमी नाम नाम को जो प्रयोग

दोहरा महाकाल की जे शरण परे सो लय बचाए और ना उपजा दूसर जग पछ्युस बैमनाए जे पूजा असकेत की नित प्रत करें बनाए तिन पर अपनो हाथ दय अस दुर्लेज बताए चौ भई दुष्ट दैत कछ बात ना जानी महाकाल तन पुन रे सठानी बल अप बल अपनो ना बिचारा गर्भठान जी बहर हंकारा रे रे काल फूल जिन जाहु बहर आन संग्राम मचाओ एक निदान करो रण माही कै अस तुज कै दानव नाही एक भाव त युद्ध न भाजा महाराज दैतन कर राजा आंताओ गीत गगन लै गए बात बिसिख तऊ हठ पाए असुर अमित रण बाण चलाए निरख खड़क तुझ काट गिराए बीस सहांसर असुर परबाना श्री अस तुझ छाडे बिदनाना महाकाल पुन जी मैं कोपा तनख टंकोर बहर रण रूपा एक बाण ते तुझे गिरायो द्वितीय सत्र को शीस उड़ायो दोह बेसिख कर द्वैरथ चक्र काट दए एक मैं बकरा चार है बाण चार हूं बाजा मार दए सब जके राजा बहर असुर का काट समाथा श्री अस के जगत के नाथा द्वितीय बाण सो

0: संवत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस पुण तीन कहिजय भादव सुधी अष्टमी रवि बारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पखियाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अपजो
1: गुरु जी का खालसा हे गुरु जी की फतेह खुशियां दे जकारे जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुर बार अकाल देख फतेह गुरपंथ खालसे दी दिना दिन चार दी कला रखनी सचे पातशाह जी महाराज।